0: 땅.
1: 하. 하. 하. 하. 하. 하. 하. 하.
0: 아이 깡통께 두루미야 보름 깡.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे।

0: इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण

0: पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरज जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
2: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने खतर

0: के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इन टू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लाके आकाशवाणी दिफू जैमे के वैंग बम लाके एफएम बैन अलोंग पेन मेगा हर्ट्स फरोई सीरा तोक बोरा सिर कैप लपेन आकाशवाणी दिफू अजय मे के दो आंता नंगली तुम न्यूज ऑन एयर अ मोबाइल ऐप अलोंग बेंता अर्जु लोंग इची नो नंगली तुम हिंदी लामर जाना लुन अजय मे अंग डेंग अलोंग पेन असोना सोना लुन अर्जु इक लोंग पु अप्रांसी नंगली तुम अलिसा चेन्नॉय महालक्ष्मी अय्यर लपेन सोनू निगम तुम किलुन लुन अर्जु इक लोंग पु अलुना लाम थे आज की रात लामर जाना मैन डॉन तो तांगते आरजू एक सिनांग लबंग सोलून।

0: Lapuanapor ng litum Elisa Chinoy, Mahalakshmi Ayer, Lapen Sununigamatum Kilunalun Archu Iglong Tanglo, Alunalam Te Ashkirat. Aduntu Alun Archu Iksinang, Lata Mangeshkar Udit Narayan Udhav Manohar Lapen Ishan, Lapen Sunaliatum Kilunalun Archu Iglongpo, Alunalam Te Ake Kuli, Lamarjanamen Mohabate Tatangte. Arju Iksinang, Labang Solon.
1: थी दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी

कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

रस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संगीता पंत की आवाज में ये गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम सुरमंजरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सलीम अहमद से सितार वादन, राग है गुर्जरी तोड़ी। तो सुनते हैं ये कार्यक्रम।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सलीम अहमद से सितार वादन, राग था गुर्जरी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे नौशाद अहमद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।

बिहार में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 12 बजने को हैं, अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में होंगे, फिर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम

0: आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।
1: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है,

दोस्तों, जीवन में बदलाव के लिए कीजिए एक प्रयोग। अगर किसी कारण आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो एक दिन ध्यान में निकालें। अपने जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए ध्यान सबसे उत्तम है। ध्यान से मन का बोझ भी कम होने लगता है, मगर इसके लिए एक ही जगह पर बैठे रहने की जरूरत नहीं है। ध्यान तो कर्म करते हुए भी किया जा सकता है। इसके लिए एक एक काम को बेहद तसल्ली के साथ करते जाना है। इससे आपको एक अनोखी शांति का अनुभव होने लगेगा। अपने घर में, काम पर, खाना खाते हुए और अन्य कार्यों में थोड़ा सा धीरे हो जाएं। जरा भी जल्दीबाजी ना दिखाएं। इससे एक बहुत बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने उन विचारों को बदल सकते हैं जो आपको बार बार परेशान करते रहते हैं, आपको अक्सर बेचैन करते रहते हैं, आपको पीड़ा देते हैं। जब हम जल्दीबाजी को त्याग कर सुकून और आराम की अनोखी दशा से जुड़ते हैं, तो ये तरीका हमें अपने भीतर की गहराई को जानने और दुनिया से जुड़ने का एक अनमोल अवसर देता है।

दोस्तों, सुबह घास पर चलने के भी होते हैं बेहद फायदे। ये तो सभी जानते हैं कि सुबह का समय ध्यान और शारीरिक गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप सुबह में ऐसे घास पर चलेंगे तो सिर्फ एक सुकून ही नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेंगे कई सारे फायदे। जिस तरह की आपको तनाव कम होकर अच्छी नींद आती है, सुबह चलने से स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, रक्त संचार में सुधार और रक्त का प्रभाव ठीक से होता है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का प्रभाव मिलता है। ये पैरों में दर्द, सुन्न होना और अकड़न जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा विटामिन डी भी मिलता है, क्योंकि सुबह की हल्की धूप में चलने से विटामिन डी प्राप्त होता है और जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यानी कि 15 से 30 मिनट तक काफी फायदेमंद होता है विटामिन डी लेना। सुबह घर से जब आप निकलते हैं, तब जब घास पर ओस की बूंदें और सूरज की किरणें हल्की हों, उस समय आप अपना चलना शुरू कर सकते हैं। यह अच्छा माना जाता है। ना कितनी आसान आप एक्सरसाइज करें या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जिसे आप रोज करना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे भी आपको कई सारे फायदे मिल सकते हैं। तो आप चाहें तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटे आप सुबह घास पर चलें और ढेरों सारे फायदे भी लें।

दोस्तों, रिश्तों की चमक को हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि रिश्ता एक खूबसूरत शब्द, एक ऐसा एहसास है जो दिल से जुड़ा होता है और इसमें अनेक भावनाओं और अलग अलग विचारों का समावेश होता है। ये खुशी की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। ये एक मजबूत, आकर्षक और निजी जुड़ाव की भावना है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो सभी हालातों में एक साथ हो, यानी दुख और सुख में, दोनों में। रोजमर्रा की छोटी छोटी कई सारी बातें हमारे रिश्तों में चमक ला सकती हैं। जैसे कई बार शब्दों से ज्यादा बोलने का असर पड़ता है। हमेशा सपाट, अपेक्षापूर्ण बोलना भावनात्मक दूरी का संकेत है। कम आवाज में धीरे धीरे बातचीत करना आपसी व्यवहार को दर्शाता है। शोध कहते हैं, रिश्तों में शब्दों के अलावा शरीर के कई दूसरे संकेत भी मायने रखते हैं। बार बार एक दूसरे को देखते हुए बात करनी या ध्यान से बातचीत को सुनना

एक दूसरे के लिए सुरक्षा सम्मान को दिखाता है। एक दूसरे की छोटी बड़ी जरूरत समझना आपसी देखभाल दिखाता है और सहनशीलता का भाव भरोसे को बढ़ाता है। रिश्ता एक सकारात्मक ऊर्जा है जो हमें मानसिक और आंतरिक दोनों ही तरह की सुकून प्रदान करता है, जिससे हम आसानी से जीवन जीने लगते हैं। इसीलिए रिश्तों को हमेशा सहेज कर संभाल कर रखिए और इस तरह आपके रिश्तों में हमेशा चमक जो है वो बरकरार रहेगी।

दोस्तों, वैसे तो बारिश का मौसम प्रकृति और सुंदरता बिखेरता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन इस मौसम में खास तौर पर हवा में नमी बनी रहती है। साथ ही भीगने से खुद को हमेशा बचाना भी बहुत जरूरी है, यानी कि मौसम हरे भरे नज़ारे के अलावा बीमारियां भी लेकर आता है। बारिश की बूंदों में कम से कम भीगने का प्रयास करें। इस मौसम में कब बारिश हो जाए ये किसी को भी पता नहीं होता, और ऐसे में जब घर से निकलें तो छाता, रेनकोट जैसी चीजों को अपने साथ ले जाना ना भूलें। बरसात में जब भी धूप निकले, बिस्तर को धूप सुखाएं, और नमी के कारण उसमें पैदा हुए कीटाणु भी मर जाएंगे। लाख कोशिशों के बावजूद अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो तुरंत गीले कपड़े बदलें और फिर तुलसी, लौंग और काली मिर्च युक्त चाय पिएं, अन्यथा सर्दी, खांसी, जुकाम होने की आशंका बनी रहती है। अपने जूते, चप्पल या सैंडल भीग जाने पर घर पर आते ही खोलकर दीवार के सहारे खड़े कर दें ताकि पानी निकल जाए, और फिर धूप निकलने के बाद इसे सुखा लें। इस मौसम में साधारण जूते, चप्पल या सैंडल ही पहनें। इस मौसम में कपड़े मुश्किल से सूखते हैं, हवादार स्थान पर कपड़े को सुखाना जरूरी है, जैसे कि तौलिया, चादर और जो हमारे रूस के यूज के कपड़े होते हैं, उन चीजों को सुखाना बहुत जरूरी है। और इसी तरह पहने जाने वाले कपड़ों में भी हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़ों का चयन करें। और इस मौसम में घर का भी निरीक्षण जरूर करते रहें कि कहीं से अगर पानी टपक रहा हो तो तुरंत उसे रोकने की व्यवस्था करें, या घर के आसपास जो भी आपको नजर आए कहीं पानी रुका हुआ या जमा हुआ हुआ तो वो भी आप उसे ठीक करा लें, क्योंकि इससे बीमारी का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा कई सारी बातें हैं जो इस मौसम में ध्यान देने की होती हैं। तो जब भी आप बारिश में भीग जाएं तो इस तरह का आप कभी भी नुकसान ना उठाएं, क्योंकि बारिश में भीगने से भी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो बारिश का आनंद तो आप लें, लेकिन उसके अलावा अपने स्वास्थ्य का भी रखें ख्याल।

दोस्तों, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप अपने विचार और सुझाव लिखकर हमें भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

दोस्तों, बात करते हैं कुछ भारत के राज्य के सबसे साफ गांवों की। स्वच्छता की मिसाल पेश कर रहा है प्लास्टिक युक्त और खास तौर पर इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल वाले इस गांव की खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक यहां आते हैं। ये है मावलिन नांग गांव। दुनिया भर में भारत का एक गांव अपनी साफ सफाई के लिए काफी फेमस है, यानी मशहूर है, जिसे देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस गांव में एक भी सफाई कर्मी नहीं है और इस छोटे से गांव की दुनिया भर में तारीफ होती है। ये छोटा सा गांव पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। करीबन 22 साल से ये गांव सफाई के मामले में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। ये गांव कैसे सबसे साफ है, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। यहाँ बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग मिलकर अपने गांव को साफ रखते हैं। लोग कहीं भी कचरा नहीं फेंकते और हर जगह आपको बांस से बने डस्टबिन दिखाई देंगे। मेघालय में स्थित इस छोटे से गांव में प्लास्टिक का इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक है। यहाँ के लोग पर्यावरण की रक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं और प्लास्टिक की जगह वे बांस और दूसरे प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि गांव में हरियाली और स्वच्छता दोनों बनी रहती है। हर घर के बाहर और गलियों में सफाई का खास ध्यान रखा जाता है क्योंकि जैविक कचरे से लोग अपने खेतों के लिए नेचुरल खाद बनाते हैं। इस गांव के लोगों के लिए साफ सफाई सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा है। बच्चों को छोटी उम्र में ही स्वच्छता का महत्व सिखाया जाता है और स्कूलों में भी साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। ये गांव अब एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस गांव को देखने आते हैं और यहाँ की साफ सुथरी सड़कें, सुकून भरी जिंदगी, हरियाली और प्रकृति की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गांव में एक सफाई कर्मी नहीं है लेकिन फिर भी जहां आसपास सुंदर नजारे आप वहां पे देख सकते हैं। इस गांव तक जाने के लिए पहले गुवाहाटी या शिलांग पहुंचना होगा और यहां से टैक्सी लेकर शिलांग होते हुए मावलिन नांग जा सकते हैं। शिलांग से दूरी करीब 80 से 90 किलोमीटर है और रास्ते में डावकी की खूबसूरत नदी भी आपको देखने को मिल सकती है जो सफर को आपके यादगार बना सकती है।

और दोस्तों बात करते हैं अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें। क्या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और किस तरह करना चाहते हैं तो इसके बारे में ज्यादा ना सोचें। व्यवसाय की सफलता के लिए आपका जुनून, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है, साथ ही कुछ बातों की भी होती है। सबसे पहले एक अच्छा व्यवसायिक विचार खोजें, अपने कौशल, रुचियां बाजार की जरूरत के आधार पर चुनें जो आपको पसंद हो। एक व्यवसाय योजना बनाएं जिसमें विवरण, लक्ष्य, वित्तीय योजना, मार्केटिंग रणनीति शामिल हो। व्यवसाय शुरू करने से पहले धन की व्यवस्था कर लें, चाहे वो आपकी बचत हो, लोन हो या फिर निवेश हो। अपने व्यवसाय को पंजीकृत करें, लाइसेंस परमिट लेना जरूरी है। एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाएं, मार्केटिंग करें, ग्राहक सेवा प्रदान करें, साथ ही लगातार निगरानी करते रहें। उद्योग के अन्य लोगों से संपर्क करें, सलाह लें, सहयोग करें और अपने व्यवसाय के वित्तीय पहलुओं को ध्यान से समझें। इन सभी बातों को समझकर आप व्यवसाय की दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला

0: 61 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्रगिरि, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरि श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent for winning gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026 held at Bucaramanga, Colombia. In a social media post, Mr. Modi said their feat reflects yet another example of the limitless potential of the nation's Yuva Shakti and their passion towards science and research. The Prime Minister further noted that it is equally commendable that in the last decade, Indian students have performed exceptionally well in the various editions of this platform. The government today informed that 4 new generation indigenous naval platforms were inducted into the Indian Navy in just 1 month to strengthen the country's maritime defence. The latest addition is INS Mahendragiri, the 6th indigenously designed Nilgiri-class stealth frigate, which

ही पटकथा पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन किया था। इस फिल्म में देवानंद ने दोहरी भूमिका निभाई है और इसमें नंदा, साधना और लीला चिटनिस भी हैं। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, फिल्म हम दोनों उस दौर की इकलौती फिल्म थी जिसमें नंदा और साधना 60 के दशक की टॉप अभिनेत्रियां एक साथ पर्दे पर नजर आई थीं। जब साल 2011 में इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को कलर करके सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया

तो देवानंद ने नंदा को स्पेशल प्रीमियर के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन नंदा ने मीडिया से दूर रहकर विजयानंद के निजी थिएटर केतनव में अपने परिवार के साथ फिल्म देखी थी।

श्रोताओं, बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। वडिंगखेड़ा से पंजाब से हमारे साथ है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। जलालाबाद वेस्ट से जुड़े हैं सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा। फिल्म हम दोनों के गीत साहिल लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे और संगीत जयदेव ने दिया था। अभी ना जाओ छोड़कर और मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया जैसे सदाबहार गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं।

कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, गुरमीत सिंह मीता, ये हमारे साथ जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन से। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल। सुर संगम रेडियो श्रोता ग्रुप गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, भावेश कुमार, सनी जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन। नाभा जिला पटियाला पंजाब से जुड़े हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु। पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।

गन। गांधीनगर गुजरात से जुड़े हैं जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष, दीपल और उर्वशी। पिपरिया से हमारे साथ जुड़े हैं कमलकांत गुप्ता और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। श्रोताओं, फिल्म हम दोनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीन था जिसमें साधना यानी मीता अपने घर के मुख्य दरवाजे से देवानंद को अंदर खींच कर लाती हैं।

श्रोताओं, फिल्म हम दोनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीन था जिसमें साधना यानी मीता अपने घर के मुख्य दरवाजे से देवानंद को अंदर खींच कर लाती हैं। शॉट के दौरान देवानंद ने ये कहकर आपत्ति जताई कि मुझे कोई ऐसे नहीं खींच सकता जैसे कुत्ते को पट्टे से पकड़कर ले जाते हैं। ये सुनकर विजय आनंद, जो फिल्म के असली निर्देशक और लेखक थे, इनको बहुत बुरा लगा क्योंकि देवानंद उनसे उम्र में काफी बड़े थे। वे गुस्सा होकर सेट से वार्डन रोड के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने चले गए और पूरी शूटिंग रुक गई। बाद में देवानंद ने अपनी गलती मानी और उन्हें वापस सेट पर बुला लिया।

ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, ये जुड़े हैं पिंगा वाला चौक गोराया जलंधर से। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़े हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। पीटीआई संसद मार्ग से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन। हम दोनों फिल्म का निर्देशन आधिकारिक तौर पर अमरजीत ने के नाम था, जो उस समय नवकेतन फिल्म्स के प्रचारक यानी पब्लिसिस्ट थे, लेकिन फिल्म के निर्देशन का पूरा काम वास्तव में देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद ने ही किया था। विजय आनंद ने अपने दोस्त अमरजीत को आगे बढ़ाने के लिए अपना नाम क्रेडिट में नहीं दिया। ऐसी दोस्ती को सलाम है।

शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी। बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनाव गांव छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने ही वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवियां खबरां। सरकार ने कहा कि देश की समुद्री सुरक्षा मजबूत करने सिर्फ एक महीने में भारतीय समुद्री फौज में 4 नवे स्वदेशी समुद्री जहाजों को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क आवाजाई के शाहरा मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रैस वे का उद्घाटन करेंगे। वणज और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यूरोप नाल भारत की आर्थिक भाईवाली मजबूत करने के उद्देश्य अज तो 17 जुलाई तक स्पेन, बेलजियम और फिनलैंड के दौरे पर होंगे। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी टिकाणे और मिजाइल से ड्रोन हमलों की जिम्मेवारी ली है। भारत ने लॉर्ड्स विखे इंग्लैंड खिलाफ एको एक महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में पकड़ मजबूत कर ली है। सरकार ने कहा कि देश की समुद्री सुरक्षा मजबूत करने सिर्फ एक महीने में भारतीय समुद्री फौज में 4 नवे स्वदेशी समुद्री जहाजों को शामिल किया गया है। इन्हों नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी है, जिसन इस महीने की 11 तारीख को समुद्री फौज में शामिल किया गया है। उच्च स्वदेशी समगरी बने जहाज आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण दर्शाते हैं।

0: किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।

0: वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
2: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा

0: प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमेरिका को चेतावनी दी है। ये दावे अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमेरिका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज डमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं।

0: आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 2:30।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, इस वक्त समय हो रहा है 2:31 और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। इस सफर में आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। हिंदी सिनेमा का पर्दा, जहां हर दौर में अपनी कुछ ऐसी कहानियां लिखी जिन्हें वक्त भी धुंधला नहीं कर पाया। कुछ चेहरे पर्दे पर दिखाई दिए और सितारे बन गए, और कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर सितारों की तकदीर लिख गए। ऐसे ही एक फिल्मकार थे जो है हमारे आज के कलाकार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रकाश मेहरा की। 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मे प्रकाश मेहरा ने हिंदी सिनेमा को सिर्फ सफल फिल्में नहीं दी, उन्होंने एक ऐसा सिनेमाई दौर रचा जिसमें गुस्सा भी था, दर्द भी, दोस्ती भी, मोहब्बत भी और जिंदगी के कई रंग भी। उनका सफर आसान रास्तों से होकर नहीं गुजरा। फिल्मी दुनिया में उन्होंने धीरे धीरे अपनी

अपनाई और साल 1968 में आई उनकी पहली फिल्म हसीना मान जाएगी। बतौर निर्देशक इस फिल्म ने उन्हें एक पहचान दिलाई। शशि कपूर और बबीता अभिनीत इस फिल्म में रोमांस था, हल्का फुल्का मनोरंजन था और खूबसूरत संगीत भी। प्रकाश मेहरा के लंबे फिल्मी सफर की शुरुआत जिस फिल्म से हुई उसका ये गीत आज भी हिंदी फिल्म संगीत की यादों में अपनी जगह बनाई हुई है ना? तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस सिनेमाई सफर की इस खूबसूरत गीत के साथ।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की। हसीना मान जाएगी की बात, जिस फिल्म का अभी आपने ये गाना सुना, गायक स्वर थे इसमें लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की। हसीना मान जाएगी के बाद प्रकाश मेहरा का सफर आगे बढ़ा, मेला, समाधि और आन पान जैसी फिल्में आईं, लेकिन साल 1973 में एक ऐसी फिल्म आई जिसमें न सिर्फ प्रकाश मेहरा के सफर को बदल दिया बल्कि हिंदी सिनेमा को भी एक नया नायक दे दिया। फिल्म थी जंजीर और वो नायक थे हमारे एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। उस दौर में जब पर्दे पर रोमांटिक नायकों का बोलबाला था, जंजीर का विजय अपने भीतर गुस्सा, बेचैनी और व्यवस्था से टकराने का साहस लेकर आया। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की यह मुलाकात आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मी साझेदारियों में बदल गई। जंजीर को अक्सर उसके गुस्से और उसके तीव्र के लिए याद किया जाता है, लेकिन इसी फिल्म में भावनाओं का एक दूसरा सिरा भी था। रिश्तों के बनने और बिगड़ने के बीच मन में उठती वह कसक, जो कई बार शिकायत बनकर नहीं एक सवाल बनकर रह जाती है। आइए सुनते हैं फिल्म जंजीर का ये गीत।

यह मुलाकात आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मी साझेदारियों में बदल गई। एक सफल फिल्म जो होती है ना, वो कभी कभी इतिहास बनाती है, लेकिन एक सफल जोड़ी कई इतिहास लिख जाती है। जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन का साथ आगे बढ़ा और फिर आई हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी जैसी फिल्में। इन फिल्मों को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, प्रकाश मेहरा अपने नायक को सिर्फ ताकतवर नहीं बनाते थे, उसके भीतर एक दर्द भी रखते थे। उनका नायक दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन अपने भीतर के अकेलेपन से हमेशा नहीं जीत पाता था। और शायद इसी दर्द की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। सिकंदर के पास शोहरत थी, दौलत थी, लेकिन जिसे दिल ने चाहा वह उसका न हो सका। पर्दे पर अमिताभ बच्चन और निर्देशन की कुर्सी पर प्रकाश मेहरा। इस मेल ने एक ऐसी कहानी रची जिसका दर्द आज भी उसके गीतों में जिंदा है।

दोस्तों, उस दौर में जब पर्दे पर रोमांटिक नायकों का बोलबाला था, जंजीर का विजय अपने भीतर गुस्सा, बेचैनी और व्यवस्था से टकराने का साहस लेकर आया। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन

दोस्तों आप सुन रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में। आप ये गीत सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। हमारे साथ आप सभी श्रोता जुड़े हुए हैं। आप सभी को इतना जरूर बताना चाहूंगी, ये कार्यक्रम आप भी सुन रहे हैं एक ही कलाकार। हमारे साथ बने रहिएगा दोपहर 3 बजे से 3:30 तक। हम आपके लिए लेकर आएंगे मैथिली मेलोडी और आज उस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन गजलें। हमारे साथ जो दोस्त जुड़े हुए हैं उनके नाम बता दूं। ये हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से। और फिर हमारे साथ हैं आज के सफर में हमारे साथ हम सफर हैं छत्तीसगढ़ चुनी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफीन कौसर, मोहम्मद इस्ताफ, नीलोफर फातिमा और इनके परिवार के सदस्य। फिर हैं बुलंदशहर से एमएस अब्बासी और उनका पूरा अब्बासी परिवार। कस्बा गुन्नौर यूपी से हैं फारूक अली खान और पूरी खान फैमिली, शुक्रिया। फिर हमारे साथ जुड़े हैं सिमरन मुखी, अनिता मुखी, सुदर्शन मुखी जी सोनीपत शांतिनगर से। और इन्हें कार्यक्रम प्रकाश मेहरा का अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। ये है हमारे सिंह गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल।

दलजीत से हैं राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। फिर हमारे साथ जुड़े हैं तुलसी मस्कीन जी और नमस्कार कर रहे हैं, शुक्रिया आपको, हमारा भी नमस्कार। और ये लिख रहे हैं गोवर्धन कॉलोनी बिहार, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। इनके साथ हैं वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधाना खुराना। फिर हमारे साथ हमारे और दूसरे दोस्त भी जुड़े हुए हैं, ये हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से, और इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है उसके लिए धन्यवाद। फिर हमारे संग धर्मेंद्र छिपा जी हैं और बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी बातें हमारी भी जानकारी में इजाफा करती हैं और आपको प्रस्तुति अच्छी लग रही है उसके लिए धन्यवाद। फिर हमारे साथ जुड़े हैं फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। हमारे संग बहुत सारे दोस्त और भी जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जानकारी अच्छी लग रही है ये जानकर हमें अच्छा लगा, शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की। उनकी फिल्मों की एक और खूबी थी, उनके गीत कहानी से अलग नहीं लगते थे। कई बार जो बात किरदार शब्दों में नहीं कह पाता था वही बात गीत कह जाता था। साल 1981 में आई फिल्म लावारिस, उसकी कहानी भी एक ऐसे इंसान की थी जो दुनिया में अपनी पहचान तलाश रहा था। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि वह कौन है, सवाल यह भी था कि समाज किसी इंसान को उसके जन्म से पहचानता है या उसके कर्म से। लावारिस की कहानी के केंद्र में पहचान की यही तलाश थी, लेकिन उसके साथ रिश्तों की दूरियां और पिछड़ने के बाद फिर मिलने का एहसास भी था। कभी कभी समय लोगों को एक दूसरे से बहुत दूर ले जाता है। जिंदगी अपनी राह चलती रहती है और फिर किसी मोड़ पर वही चेहरे दोबारा सामने आ जाते हैं जिन्हें हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। ऐसे ही पिछड़ने और फिर मिलने के एहसास को समेटता ये गीत आपकी नजर है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म लावारिस का ये गीत। हमारे सच दोस्त जुड़े हुए हैं, वो हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। फिर हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। हमारे साथ चिरमिरी कुरासिया कालवी से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरी, दिनेश प्रसाद लहरी और कालिंदी लहरी। फिर गांव फिरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। और हमारे साथ जुड़े हैं तिलीवाला उत्तराखंड घनौरी से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया, आयान बाबू और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप मक्कड़ जी, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रकाश मेहरा जी की, जो हमारे आज के कलाकार हैं। प्रकाश मेहरा की फिल्मों की दुनिया में जिंदगी हमेशा एक ही रंग में दिखाई नहीं देती। उनके किरदार कभी हालात से लड़ते थे, कभी रिश्तों में अपना एहसास या हिस्सा तलाशते थे और कभी सब कुछ होते हुए भी भीतर से अकेले रह जाते थे। 1982 में आए नमक हलाल आज भी अपने संवादों, अभिनय और गीत संगीत के लिए याद की जाती है। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी और वहीदा रहमान जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म प्रकाश मेहरा की उस खासियत को एक बार फिर सामने रखती है जिसमें वे बड़े सितारों और लोकप्रिय सिनेमा के बीच हर किरदार को अपनी अलग पहचान देते थे। और फिर 2 साल बाद आई फिल्म शराबी। विक्की कपूर, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी लेकिन जिंदगी में अपनापन कम था, वह लोगों के बीच था फिर भी कहीं अकेला था। उसके पास बहुत कुछ था लेकिन शायद वही नहीं था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। शराबी में प्रकाश मेहरा ने एक बार फिर दिखाया कि किसी इंसान की जिंदगी को सिर्फ उसकी कामयाबी या दौलत से नहीं समझा जा सकता। हर व्यक्ति की अपनी राह होती है, अपनी तलाश होती है और अपनी मंजिल होती है। कभी मंजिल मिल जाती है, कभी रास्ते बदल जाते हैं और कभी जिंदगी हमें यह समझा देती है कि हर किसी का सफर एक जैसा नहीं होता।

17 मई 2009 को प्रकाश मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन कुछ कलाकारों की, कुछ फिल्मकारों की विदाई सिर्फ एक तारीख बनकर नहीं रह जाती, क्योंकि उनका रचा हुआ संसार उनके जाने के बाद भी पर्दे पर चलता रहता है। आज भी जब हम कोई भी गाना, या तो हो बेखुदी में सनम या ओ साथी, जब हम ये गाना सुनते हैं तो सिकंदर का दर्द याद आता है, तब के बिछड़े हुए नए रिश्तों की दूरियों को हम महसूस करते हैं और मंजिले अपनी जगह है जिंदगी के सफर को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देता है। यही एक फिल्मकार की असली विरासत होती है। आज प्रकाश मेहरा की जयंती पर याद उस फिल्मकार को जिसने कैमरे के पीछे रहकर हिंदी सिनेमा के पर्दे पर कई अमर तस्वीरें बनाई। बस आज की सफर यही।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडी। इस सफर में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। कुछ गीत कानों से होकर गुजर जाते हैं और कुछ शब्दों की शक्ल में हमारे भीतर ठहर जाते हैं। गजल शायद संगीत की वही विधा है जहां आवाज ऊंची नहीं होती लेकिन बात बहुत दूर तक जाती है, जहां दर्द को गजल संगीत की वही विधा है जहां दर्द को कहने के लिए शोर की जरूरत नहीं पड़ती और मोहब्बत हमेशा इजहार की मोहताज नहीं होती। हिंदी सिनेमा का एक दौर ऐसा भी रहा जब फिल्मों में गजलें सिर्फ गीत के रूप में शामिल नहीं होती थीं, वे कहानी के भीतर किरदारों की अनकही बात बनकर आती थीं। शायर के शब्द, संगीतकार की धुन और गायक की आवाज जब एक दूसरे में इस तरह घुलते थे कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाए, तब जन्म लेती थीं वे रचनाएं जिन्हें दशकों बाद भी सुने तो लगता है जैसे समय कुछ देर के लिए वहीं ठहर गया हो। आज मैटिनी मेलोडी में हम सफर ये जो तय करेंगे वो हिंदी फिल्मों की ऐसी ही कुछ चुनिंदा गजलों का होगा और शुरुआत एक ऐसी गजल से जिसमें मोहब्बत किसी से कुछ मांगती नहीं बल्कि सामने वाले के हिस्से का दुख भी अपने नाम कर लेना चाहती है। साल 1964 की फिल्म शगुन, संगीत खयाम का, शब्द साहिर लुधियानवी के और आवाज जगजीत कौर की। साहिर की शायरी की यह खूबी थी कि मोहब्बत उनके यहाँ सिर्फ खूबसूरत एहसास नहीं एक गहरी साझेदारी भी बन जाती थी। किसी से यह कहना कि अपनी परेशानी, अपना अकेलापन, अपने हिस्से का दुख मुझे दे दो, प्रेम का इससे अधिक सहज और निस्वार्थ रूप शायद ही कहीं और मिले। आइए सुनते हैं ये गजल।

जगजीत कौर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म शगुन की ये गजल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मितनी मेलोडी और आज आपके साथ इस सफर में आपकी हम सफर हूं मैं, आपके रेडियो हम सफर सोनाली। फिल्मी गजलों के सुनहरे दौर की बात हो और मदन मोहन का नाम न आए ये लगभग नामुमकिन है। उनकी धुनों में शब्दों के लिए एक खास जगह होती थी। संगीत कभी शायरी पर हावी नहीं होता था बल्कि उसे थाम कर धीरे धीरे श्रोता तक पहुंचाता था। 1973 की फिल्म हंसते जख्म, इस फिल्म में कैफी आजमी के शब्दों को मदन मोहन ने संगीत दिया और लता मंगेशकर की आवाज ने उस एहसास को जैसे पूरा कर दिया। कई बार कोई याद अचानक नहीं आती, वह हमारे साथ ही रहती है, बस हम रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी ओर देखना छोड़ देते हैं और फिर किसी दिन किसी पल वही याद सामने आ खड़ी होती है और मन में दबा हुआ बहुत कुछ आंखों तक चला आता है। इसी एहसास को समेटे सुनते हैं ये एक हमारी गजल।

आप सुन रहे हैं फिल्म हस्ती जख्म से ये गजल, आवाज लता मंगेशकर की। आप सभी हमारे साथ जुड़ते हैं, हौसला बढ़ता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं। कार्यक्रम सुन रहे हैं मितनी मेलोडी, मधुर प्रस्तुति, मोहक गजल्स, मनपसंद मनभावन कार्य। मन से बड़ी वाली बधाई, आपका वर्तमान और भविष्य बहुत मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हमारे साथ जुड़े हैं संतोष मक्कड़, माफ़ कीजिएगा, संतोष खड़सी और विनोद खड़सी, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से। इन्हें कार्यक्रम अच्छा लगा और इन्हें हमारा पिछला कार्यक्रम, जी हाँ, एक ही कलाकार भी अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे साथ हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। आपको हमारे कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गजलों की, उस सुनहरे दौर की। मोहब्बत की राह आसान होती तो शायद दुनिया की इतनी शायरी जन्म ही न लेती। कभी समाज की बंदिशें, कभी हालात और कभी खुद इंसान की मजबूरियां। प्रेम के रास्ते में मुश्किलों की शक्लें बदलती रहती हैं। 1973 की फिल्म दिल की राहें, इसकी गजल है, रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, इसी कश्मकश को शब्द देती है नक्शलयालपुरी के शब्द, मदन मोहन का संगीत और लता मंगेशकर की पुरकशिश आवाज। यह शिकायत भी है और बेबसी भी, लेकिन इन दोनों के बीच शायरी की वो गरिमा बनी रहती है जो पुरानी फिल्मी गजलों

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दिल की राहें में से आप सुन रहे थे ये गजल। हमारे साथ हमारे दोस्त जुड़े हैं गांव फिरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। इन्हें कार्यक्रम बढ़िया लग रहा है, इन्हें गजलें भी अच्छी लग रही हैं, जानकर हमें अच्छा लगा, शुक्रिया। दोस्तों, कभी कभी शायरी अपने समय से आगे निकल जाती है। वह किसी एक किरदार की बात कहते हुए भी समाज की बहुत बड़ी सच्चाई सामने रख देती है। 1970 की फिल्म दस्तक की गजल हम है मताई कूचा और बाजार की तरह, ऐसी ही एक रचना है। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों को मदन मोहन ने संगीत दिया और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज। मता यानी वह चीज जिसे बाजार में बेचने के लिए रखा गया हो, इस एक शब्द के सहारे यह गजल एक ऐसी स्त्री की पीड़ा कहती है जिसे दुनिया एक इंसान की तरह से नहीं, अपनी नजर और अपने पैमाने से देखती है। शब्द गहरे हैं लेकिन उनकी जो चोट है वो बहुत शांत है। शायद इसीलिए यह गजल सुनने के बाद खत्म नहीं होती, देर तक हमारी सोच में बनी रहती है। आइए सुनते हैं ये गजल।

तब तक हमारे इस सफर में मदन मोहन की धुनों का रंग था, अब लौटते हैं एक बार फिर खयाम के संगीत की दुनिया में। खयाम की धुनों की अपनी एक चाल थी, वे जल्दबाजी में श्रोता तक नहीं पहुंचती थी, धीरे धीरे खुलती थी और शब्दों को सांस लेने की पूरी जगह देती थी। 1977 की फिल्म शंकर हुसैन की यह गजल उसी नफासत की खूबसूरत मिसाल है। जनिसार अख्तर के शब्द और लता मंगेशकर की आवाज कभी किसी की मौजूदगी दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती रहती है। कोई दूर होता है, फिर भी उसकी आहट मन पहचानता रहता है। दूरी और मौजूदगी की इसी खूबसूरत एहसास

दोस्तों, आज कार्यक्रम मैथिली मेलोडी में हमने बात की सुनहरे दौर की उन गजलों की जो आज भी हमारे जहन को कुलबुलाती हैं और उनमें पूरी

दोस्तों, आज कार्यक्रम मैथिली मेलोडी में हमने बात की सुनहरे दौर की उन गजलों की जो आज भी हमारे जहन को कुलबुलाती हैं और उनमें पूरी तरह से बसी हुई हैं। ये सफर आपने तय किया था मेरे साथ, यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। इस गजल के साथ आपको छोड़ी जाती हूँ, फिर मिलने के वादे के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस, जिसमें आज आप सुनेंगे रूबरू। इसके अंतर्गत सुनेंगे आप अनवर जलालपुरी, शायर और कलमकार से नोमान शौक की बातचीत।
1: उर्दू मजलिस के सामीन की खदमत में सरफराज आलम का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम रू बरू। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम किसी अदबी, समाजी या किसी माशी शख्सियात से आपको रू बरू करवाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उनसे बात करें और उनके जो तजर्बात व मुशाहदात हैं उनसे इस्तेफादा करें। तो इसी सिलसिले के तहत आज जिस शख्सियत से हम और आप रूबरू होंगे, उन्होंने काफ़ी तवील अरसे तक उर्दू मुशायरे की निजामत का फरीजा अंजाम दिया है। सामीन, मैं बात कर रहा हूँ मारूफ शायर और मुसन्निफ जनाब अनवर जलाल पुरी की। तो आइए आपसे की गई बातचीत की ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं। आपसे महवे गुफ्तगू हैं नोमान शौक।
2: हजरात, हम गाहे गाहे आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियतों से कराते हैं जो अपने खास मैदान में एक मुनफरिद मुकाम रखती हैं। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे दरमियान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिसे हम मुअल्लिम की हैसियत से भी पहचानते हैं, एक बहुत अच्छे शायर की हैसियत से भी वो सारी दुनिया में जाने जाते हैं, बहुत अच्छे तर्जमा नगार, बहुत अच्छी नस्र लिखने वाले और बहुत उम्दा नजामत करने वाले। मेरी मुराद है मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब से। हम स्टूडियो में आपका खैर मकदम करते हैं।
3: शुक्रिया नुमान साहब।
2: आपकी जिंदगी के जितने पहलू, जिनमें से शायद चंद एक का जिक्र मैंने यहां किया है, उसमें अगर आपको खुद मैं फैसला करने को कहूं कि आप इनमें से किसी एक अपनी हैसियत को तरजीह देना चाहें तो वो हैसियत कौन सी होगी?
3: देखिए नुमान साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कमजोर पहलू की वजह से नुमाया हो जाता है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

वर्षा के मी चुएंदुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलोंग आसन आसन कपचे थांग वर्षाई दो लबांग सुंग बोंग माई मीटिंग पांगरीपांग दोन महांग के थे किथी के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेम की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कपरेक आसन आसन अलम पचे थांग जी लिपुते लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलोंग नंग हुमरी इक्तमी मोबाइल पेंजों से चिंकी इक जी पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो

0: dia bang pen kede nga bang la abla da group che mela le det sita me thang a kan ho ka ve thang a ka siksa ka ve a o पॉजिटिव पुनन ओ पॉजिटिव आ मेक आदान की पिया मेक बंग सीता मेला आ बेलेक बी पॉजिटिव तंग बी निगेटिव फान सीता मे पी मे ब्लड ग्रुप पेन बंगे थांग का सिक्स का वे
1: कला
0: अजत आ ब्लड ग्रुप ता पी मे ला पेन अजत आ ब्लड ग्रुप तुम सीता मे चो देंग दुन मे
1: कला मे पी कलाम थे से नंग लिरा रा फान के थान पाजिर मी पोन लो तांते डॉक्टर पुथत निलिनार जुथुलांग ला मेक दान का चिपिया पुथा तांते ब्लड ग्रुप मते वी के आलिंग अलांग ले चिपिता मे पुनांग ले थान पाजिर मी पोन लो हला आ मेक कचो देंग दुना बांग फु लासो मेक कि मी कि लोंग हु आ मेक आ मेन था मे थांग आ मेक आ तेंग ला चिचार इमा मते थांगत का कतोरा आ वेजी मा ला कि चार इ हु
0: केचो देंग आ बांग सिता मे ला ए भय आ ऑपरेशन ला है कुरी तांग लाप सब रिकवरी बा आ मेक के क्रेंग ला है क्रेंग लाप लो पुलते चिचार इपा मेकअप आ प्रांग को सोंसे का चिचार माला सोंथत सि चिचार पो
1: कला मे पिकलाम लो रोंग रुबारा ता तुम सता मे ला सोलाम थेपेन अले लोंग इ पिक जी पुनेले तुम नेंगे थे दम दो तांगते पुथोत निलिनार जुथु इगलां काची चार जों से चिचार इमेसेन लो पुलोते मजोक ल चिपिदाम पोसता लगे थांग थे बाजार लो के दि मजोक ता अनिंग हांग लो पुलोते चिपिदाम
0: अनिंग हांग अन बा के अबांग फुतिना ने पि मेल
1: कला तांगते डॉक्टर ला मे कच किमी कचो देंग दुन बांग फु ला पेन ला मे किमी आ ओक पेन कचे तोन को आना जिर दिंग मते को आना निंग कान अन ला सो मेक चार इमे
0: ए भय ऑपरेशन अमो पे निल तुम छे थाना सन ल ला ए भय ऑपरेशन कुरी टांग देत आ मेक्रेंग एतलो पुंते लगे आकाई दुन टिकता चेचार इवेर पो जोंग सिया ला केचो देंगा बांग फुआ बेले का मेका के सो छोलोंग ले ला केटेरेक तंग केटेरेक पुगे ला लेंस के पंग हुन पेनाटा के यंग तुमने चेचार छे दे तितिया के सो ल ला हया के सो बा आ मेका पर्दा लोंग ता डायबिटीज हाई प्रेशर पेन पेने आ मेका पर्दा लोंग आ बेमार रा के सो ल हाई लोंग ले आ मेकार थो नर्व लाई लोंग आ के सो हवे पुलोते काई सीता चेचार इवेर पो
1: कलां मे पिगा साइलो डॉक्टर मे पिगा लाम थेसिनांग लिगि थान इग्लो तांगते बुथोत नेली आका प्रेक आकार जुनि लिना आर जुथु इग्लां तांगते मे का कि जॉय पेन दान का चिपी माते आइ डोनेशन आ साइकि क्लेम जापान आरता कि ठीक पोन लापु माते एज लिमिट लापु आसन दु माला हो
0: ला आई डोनेशन बा मेका दान पोलों के एज लिमिट पबां के एकदम आकी बिनाइ लपेन आ ताकि ओंग नाई तुम फन इसी दो दो ला बंग आकी बी बंगे निंगन इसी पेन आके कोम मा बंगे आई डोनेशन पीपे दे सिता मे चोक बा देंग ता देंग दे निंगन इसी पेन आकी बी बंगे एक्सेप्ट से अंके ला पेन अन पर मा के निंगन इसी पेन थक अन बंगे अबंग फुटिन ता पी मे अंके आके सारा मो पेन लि पु बमा ला आके सारा तुम बंगे आई डोनेशन पर देंग दे दे जी पु बंगे देंग दे पु के काली सीता मे हला आर्लिन के सार तुम आ मे का बंगे इसी हला कॉर्निया लंग सेल्स दो दो एंडोथेलियल सेल्स पु पु ला सो आर्टा हला आर्टा पर डैमेज आके हे नो दो कक टिटि ला से एन नो दक टिटि ला सो पछि आर्टा ओंग थु पिक आना बंगे 75 इयर्स तंग हो 80 इयर्स तंग हो ला संजात बंगे बा एक्सेप्ट पिनो दाक तिति ता दोको के ते हुत पेन ला स्वांग बोंग अन पेन आर्ता बांके एन मेलो निंकानी सी पेन अप टू 75 इयर्स 80 इयर्स ला सोनन के ए देंग उन लो
1: कलांग तांग ते डॉक्टर ला अ मेक जोंग सी मे ओ ए पुलोते आर्ता जुम हेक पुसेता मे ला के पी पेदेत सेता मे पुआसन लो के दिनांग लेगी पुदा मलम थे बांके कला मे पिगा साइज हे सिनांग लिगे थान इग्लो तांते डॉक्टर नोनी सी आकार जुनि लिनाले फानांगार जुथु इग्लांग तांते ए मेक दान काची पी माते आइ डोनेशन काची पी जे फान इनुत अबांग फुजों से आलो जे तोक देत पुलोते ला आ मेक के हर माते ऑपरेशन ला सो साइ कमेंट तु हुसे डॉक्टर आ तुम के क्लेम पोंजी ला रेंग एरा हुसे हेक पोंजी मा माते थिलो ता पी से हेक जि मा थिलो ता पी पुता मे को आना जिर कि दिंग अंग बोंग से ला सो मेक हेक नांग जि ला ली नांग ली नांग थान बजिर मेक थाते
0: ला अमेगा दान का चिपीजी प्लोते अमो पे नीली तो अ प्रोसीड्यूर असन से कोसन से के क्लेम नेंग मा ला मंग से नीले थान पोन थु पो इनो दा मने त बांग जोंग से आ निंग के मे पेन दान चिपी देत पो पु मा थालो प्लोते हला काचे चाका लो बांग के फॉर्म जोग दु नंग पो ला पेन ऑनलाइन से मे रजिस्ट्रेशन अमो पेन छ थाना सन लो ला हे आसा क्लेम नंग पो एनके इसिया के नंग सोट ला हे फॉर्म रजिस्टर दुन ला पा पिपन इसिया के नंग सोट बांग के ला आ हे मा त सोरा तुम फाना सोला lambang pachichini nangji non ni sitame ni mo ni likela pledge ki kuri don tanglo ka che chak don tanglo modan pg po non na ni che chak don lo pusa mi ni hema so tum han ka che thana ke nang so athe ni che chak don po hem tum han che

0: sa tum hedi alang tum long isi a friend na soni tum arjab do notang te labang so so alang a problem alang ko pise aning ke oi ma ko ba ko pise ke matha ma ma ko pipo se charlie ing tung te det ma ba a chat problem do dos ta me inot a teacher pa antum ka chethan ji pan a courage do ji pusini li matha da nili tum ke thana ho sami classroom along sami ili tum alam sami osomaram thana ar ju ji pusini li matha da apo se according to me ta a limit along bang strict nang po but not that abc strict da banke mi mi de jima mate osmartom koson lo iphan hedi nang nang chethan the de jima nang chi open up de jima pusineli mathada
1: chorola madam tangteli tum open strict alam si chethan last dinang li phase mena arju det po tangte nang like strict teacher ma mate friendly teacher la
0: nili pamu tame chethan lo nili ke la puson lo friendly pole pu data cho nili bangla an ini ke nining sedeng u personally ke nining sedeng u bang bon sami osmartom long bang kene ke hedi mane patient level hedi hetan mane osomar tum pen kai kita ni ke kaching ki pen kachethan pen kang nek don pen la son pen sik somana lam ke ni phan hedi ki pa olai lai isia trick dololata strict bang ke only classroom along bang ke ni strict o samela pen ni classroom pen le hong wang lu pulo tangte ni ke la high strictness bang ki aphichi bi koksi osomar tum pen aku chingki po chethan po la pen ke soman tum non lom ke tum lang nam lu pulo tangte osomar tum ke angton isilo class 6 7 8 lom lekili lo pulo tangte hedi la asona son pin sword so alam la haita hedi pangrum dun petnang ko ili teacher tum ke la haita chini dun lap lo ke soman tum long ke apose la haya lam ta hedi nang ke pachi share ji phan nang ke pa open up ji phan ke ni li bang ke hedi la puson si a trick logai po friendly dun lo pulo da pe hala tum tang ke nang chathan po pola dak pen sa ke he no a ke mi sa mi ni li bang ke a collision speed dun thu po explain dun thu po than dun thu po la son ke he no la son ke mi po pe ni li la tum phan la puson si handun do let's see in short ke langnam lo pulo tangte ni ke I'm not that strict and then aku mani friendly pick takali sami si ang bong along si do pusin li chi matha da
1: tangte so mara tum nang li long pen ku ppa so si tang charli don lo mate nang li ko son pens inspire
0: on la so mara tum phani tum kai ke ta hedi a lesson ke me si tum pinang ji as a teacher pulote ili tum a responsibilities hi pick pa mo sami ni li ning je lo apo si ni li bangke classroom along ni li pcbc bhag ke ni ko pc claim lo pulo tangte o somar phan ke life lesson si ki pp di emi thank experience long lab lo posi o somar phan kai kitani ake mi phan si hedi la tum phani than pon po je life along ke ake sung da phoji ake mi da phoji a hot pen ke failure ta doji a hot pen ke success ta doji bon sami la so hot nang kai kita mission pen le nang arjap thip lo tangte nang inura monit nang manvek ji la pen ke kai kita nang parents tum phan nang tum respect chi pituk nang teachers tum phan respect chi pituk la haya son kai kita ni li bangke most of the time whenever ni class and no pulo tangte ni osomar tom han ka inspire pon mate ki motivate pon la bang sinili ning hang apo sinili life lesson sinili osomar phan pp la si osomar tom ni phan tami isi attack tami nang pilo madam it's so inspiring puni phan kaita aki miss ni tom han kaita nang than than nang bujai pick pusini phan osomar tom tami tek nang ki pipon mate nili sa mechar julong apo sinning sam pikan lo osomar tom han ta ili tom kang hon pon thek la ke isi as a good mane sign of teacher posinili mathadam lo isiat sign ke melo teacher tum osomar tum phan ada heka somar tum mangke noni phan ke la anlo je nang ke chemar mane second parent po ansi hedi ni phan ke nang chi consider students a relationship ke mission a bonding ke mission lapen aning nang ka ching sam do kok posi osomar tum pass out det sami nang chi tengni uni det lo la si isi ke la haya son sami ili tum teacher tum pulo tangte ekta sign ke mi pinang ji posinili mathada
1: churupik lo madam tangte nangli phan ki jut si alam se nar jupon po nangli teacher ka chimana po nangli ning tong ka rong ma mate nangli ning tong ke oilo nangli solam chethanik jima
0: nilining arong
2: namaskar aakashvani se samachar sandhya ke sath main mukesh kumar वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमरीका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को

0: रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: Other operating income is not included.
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के

0: छुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and four others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history, beating England by 270.

aju pon sina an ke ta ho dei hako ahut ceprong po di malong richo inut dolo halabang so richo ke ahukum so pik claim kle dam de atuma phan lang selet piklo ta ho bang so ajo hula dak ke do dun amulu ga tuman ta cholong soi lapen selet le soi asonsi nang manlo lapuson dambom dambom ahut inut bang so rong na thu mate jangring so damlo bang so dambom ahut towaralong phirui thepo mate phirui richo bang kisung thek tiklo tahodei anke labang so phirui richo bang jangring so ke dam thek dun long si phirui pudun lo tahon ओ जांगरेंसो कोनाची के दामपो जांगरेंसोता चिथाक दुनलोता होंदे नेके चुमोवे ओंसी चेप्रोंग पुआरोंग आन दामरेजी पु चिथाक दुनलो फिरुयाबांग बुदुनथुलो ओ जांगरेंसो नेफान के सुंगपेन नेपाजोकते कांगथा मोनेता नांग के सुंगलोते नेमे नांग ताराम नन नेता नांगरापो lapuson si phiruyabang pudhunlo ta hodei an keta ho bangso phirui ki pualam jarengso munthi si phiruyaphan pejok te kanglo bangso phi puthot jarengso bang dam thulo lapuson si puthot chetung le pai kisung phothuli lo lapen jarengso ta pejok te kangpen dam thulo पुसन दामबम दामबम चेप्रोंग अरोंग लेजी दक दक वथुंग ले पाय किसुं थेकतिक चेतोंग थुलो ता हदे आन के थिक ला सो पर हुत वथुंग ता फिरुई काचे चाक असन थत चे चाक्सी जारें सो ता वथुंग अफान पेजक ते कांसी पालेलो बोंता जारें सो के रोंग आन पाले लेसी रिचो लांग हे आनसी दो कोगलो ता हो आथे जारें सो के आपे अवे आरी अवे माते आपे आरी मे ओ ए लापेन के तेर के एरासन पेना मोरिचो नेपथे राक देत पु पु माथा मासी लांगहे आन पाले अमात लोंग तारांग सोंग सी दो कोगलो ता हूं आर्जु लांग लमा हो दे जुद्जे लांग दे आर्जु थुनोय पु थोत आर्नी के रेचो असो पी लांगहे वांग लता हूं रिचो सोपी लांगे के वांग थेक देत पेन जांग रिसोता पोंसी वुत पांग चेंग लो पोंसी की वुत आर की जुमे ओंग तांगते मोंजिर सो वांग जिर सी थेंग पी थेंग प्रांग आर वो क्लो प्रे आन लो लापुसो ना पर हुत रिचो सोपी के आनिंग के दोक आनिंग के हांग दो कॉक लो तांग दे रिचो सोपी के लांगे पेन दाम सी आहेम कुट इंदें क्रेहिनी चिलु दाम सी चिरु चार नाबलो लासो पर हुत रिचो तुम पेनान सोता आसुपी का चिरु पेदोकलो बोनता पहाम उन ए देत सी कि जुत सी आर जुलो ता हंदे ओपे नांग को पिया पसी ला आना लाम थे नांग हुत देत ता नांग का चिरु पेहाम उन ए देत लो मा तांगते नांग पियार जे पोर जे किलित तौं पेनान सोपो के दो पोमा पे पुपेन के रिचो सो पिता काचिरु पेन दो जयलो ता हदे आन के ता हो पु थॉट अदाप के रिचो तुम अरोंग के थे कि बिया मुलुक हांगसी वांग पेडलो लापेन आसो पिया फान जे हांगसी नांग चेलांग नोन पु हांगलो बोंता रिचो सो पी के जांगरिंग सो फान हेक लोंग ले देरा मासी सिरकु चिलुत्सी चिरु थुलिलो ता हदे लापेन कोमाची के दोयलांग मापु आबिदी जुत्सी आरात अतुमाफान पारिदाम तोयलो ताहोदे लापुसन रिबम रिबम अफिके जारेंसो अफान थेगलोंसी हांगपनलो बोंता जारेंसो के रिचो अहेम दुंदे डलो आथेमा आलांके आपे अरी राक फ्रे माते राक फ्रोत के तेर के एर आमासी रिचो अफान आनिंग ओयलाक जिपुसी दुंदे डलो ताहोदे अनके पीमा रिचो की